0: ओके देख मालूको विंतिस यने माका मुजिका फुरक ने बेहुसी बनु सेलेस ऑपरेशन अब मालूको विंतिस इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यो प्रोग्राम के बेलु जस्टिन इता वोट बेले हतो टॉक इता वोट ने सुजेस्टाम बालु मा सेक्रेटरी जुवेंटुडी कातक पॉलिटिका साइडा ओ पॉलिटिका वेंसा मकने बेले हालो होडी हपारा डिसेम्प्रेगो इहा इतान्या नसाउ
1: मोलोगा तुफो सुजेस्टाम बा सेक्रेटरी जुवेंटुडी रे स्पोर्ट अवनोइन Secretario de Juventud y Deporte, ni hemos esforzado la, más bien está a tener la concierto de Estado. Concierto de Estado ni es superestructura política, no infraestructura e ideología.